0: एक ऐसी दुनिया में जहां जिराफ अब सबसे लंबे नहीं है। ज़ूस विक्टोरिया कर्व से डीनोस एट द ज़ू को प्रस्तुत करता है। अपने सभी पसंदीदा जानवरों के साथ तीन चिड़ियाघरों में 60 से ज्यादा वास्तविक आकार के डायनासोर के साथ एक पुराने जमाने के एडवेंचर के लिए तैयार हो जाए। मेलबर्न ज़ू, वेरीबी ओपन रेंज ज़ू और हिल्सविल सेंचुरी की अनोखी खुली जगहों पर एनिमेट्रॉनिक जीवों को जिंदा होते देखे। डीनोस एट द ज़ू का प्रदर्शन यहाँ केवल सीमित समय के लिए है। आज ही अपने एडवेंचर की योजना बनाएं।
1: 97.7 FM presents the ultimate 80s with Sheep Up Louise. Swing back into the 80s every Wednesday night, 8 o'clock till 9.
2: Are you ready to roll into a world of fun, friendship and fitness? Join the Cranbourne Bowls Club today. Whether you're a seasoned bowler or a complete beginner, our club welcomes everyone. Enjoy the thrill of the game while making new friends in a supportive and vibrant community where you'll have access to top-notch bowling greens, members events and tournaments, social gatherings, and of course, it's a fantastic way to stay active and healthy. For more information on the different levels of membership, call the Cranbourne Bowls Club on 03-5996-1272 or visit cranbournebowlsclub.com.au. Station sponsor.
1: Entertaining the Southeast. 97.7 FM, the voice of the Southeast.